0: की फतेह।
1: शहीद भाई हरदीप सिंह निजर गुरमत स्कूल दे विद्यार्थियों वालों आप जी नूं रह राज साहब जी दा पाठ सरवण करवाया है। अरदास बेनती बड़ी खुशी हुंदी है जदों साडे छोटे छोटे बच्चे लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे स्वरूप आ ते बेटी ने आप जी नूं पवित्र हुक्मनामा साहिब सरवण करवाया। तो संगत जीओ किड़ियां बख्शिशां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने साडे इन्हां बच्चियां ते कीतियां ने कि जो छोटियां छोटियां उमरां और सतगुरु महाराज साहिब जी ने एडियां वड्डियां बख्शिशां बच्चियां ते कीतियां लड़ीवार गुरबाणी दे पाठ सरवण करवाउंदे ने। हुण सा संगत जीओ बच्चियां वल्लों आप जी नूं आरती आरता रस भिन्ने शब्दां दा कीर्तन सरवण करवाया जावेगा। सिमरत कौर, अमनान कौर, मनप्रीत, मनरीत कौर, जपदीप कौर, महताब कौर, भाग सिंह, शान सिंह बच्चे आप जी आरती आरता शब्द कीर्तन सरवण करवाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: परमेश्वर दा अकाल पुरख वाहेगुरु दा जो पाणा है पाप जो उस नूं पाउंदा है अपनी रजा अनुसार मालक जो कुछ भी करदा है उस नूं हिरदे दे अंदर प्रवान करे
1: नहीं दोष प्रभ महे कब ठान है
0: मन दे अंदर कदे भी ऐसा ना सोचे कि इहदे अंदर प्रभु दा कोई दोष है परमात्मा दे प्रति मन दे अंदर कदी भी ऐसा ख्याल ना आवे क्योंकि कई बार बंदा संसारी हालातां दे अंदर मन दे अंदर सोचण लग पैंदा है कि शायद ये परमात्मा ने मेरे नाल बहुत माड़ा कीता है वो मन करके उलाहने दी बिरती विच रहिंदा है पर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने जिहड़ा गुरु का सिख है गुरमुख जीवन दी ए जुगती है कि जो उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं पांदा है जो कुछ ओ करदा है उस परमात्मा दी रजा विच रवे
1: आछो जान मुद्दत चित रहै
0: परमात्मा दे कीते होए नूं आछो जान चंगा समझ के जो कुछ भी वह करदा भावे उस सानू चंगा लगदा के नहीं लगदा पर उस मालक दी उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी रजा नू हमेशा ही मन दे अंदर चंगा समझना है आछो जान मुदत चित रखै मुदत तो भाव है प्रसन्न मन दे अंदर प्रसन्न रवे मन दे अंदर खुश रहे जो मालक दी रजा है अपने मन दे अंदरों हौमे भाव त्याग के मन दे अंदर परमेश्वर दे कीते दे अंदर राजी रहे
1: तन हंता को नित प्रात दहै
0: मन दे अंदर कदी भी अपने आप दा अभिमान ना करे भई मैं इस तरीके दे नाल चाहुंदा सी इस तरीके दे नाल नहीं होया जा जो मैं करदा हां ओ हुंदा है महाराज कहिंदे ने मन करके हौमै दा त्याग करके जिवें भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुरमुख हौमै पर हरै मन भावै खसमे दा पाणा पैरी पै पा खाक होए दरगै पावे मान निमाणा वर्तमान विच वर्तदा होवन हार होए परवाना कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना राजी होए रजाए विच दुनिया अंदर ज्यों मेहमाना भाई गुरदास जी कहिंदे ने जिहड़ा गुरमुख है वह जीवन विच विचरदिआं होइआं अपने मन विचों आपा भाव कढ के मन करके निमाणा हो करके रहिंदा गुरमुख हौमै पर हरै मन भावै खसमे दा पाणा मन दे अंदर जो खसम नूं पाउंदा है उसे नूं प्रवान कर लैंदा पैरी पै पा खाक होए हौमै छड के सब दे चरणां दी धूड़ी बनदा है दरगै पावै माण निमाणा जिहड़ा निमाणा हुंदा है मालक दी हजूरी दे अंदर ओ माण पाउंदा है वर्तमान विच वर्तदा होवन हार होए परवाना वर्तमान दे अंदर प्रेजेंट दे अंदर जो कुछ हो रहा है जो कुछ मालक दा हुक्म है जो वाहिगुरु दी रजा है उस नूं प्रवान करदा भाई गुरदास जी कहिंदे ने कारण करता जो करे ओ करता जैसा भी कारण बनाउंदा है क्योंकि जो कुछ हुंदा है उहदे पिछे परमात्मा दी रजा हुंदी है रब दी मर्जी तो बिना पत्ता भी नहीं हिल सकदा संसार दे अंदर दुख सुख उस वाहिगुरु दी रजा है हौमै करके असी मन करके जदों तक सानू कोई चीज अपने अनुकूल लगदी असी कहने ठीक है पर जदों अपने अनुकूल नहीं लगदी मन दे अंदर रोस पैदा हुंदा मन दे अंदर उलामा पैदा हुंदा महाराज बाणी विच कहिंदे चंगे चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए आशक ए ना आखी है जे लेख है वरतै सोए। आशक ओ नहीं है जेड़ा जेड़ी गल उसनू चंगी लगे ठीक है, ते जेड़ी गल उसनू चंगी ना लगे फिर ओ गलत है। चंगे चंगा कर मने, चंगी गल नू तां कहिंदा ठीक है, ते मंदे जेड़ी आप नू ठीक नहीं लगी ते मंदा होए, उहदे विच ओ फिर विहार करके मंदा हो जांदा, रोस करदा। ये प्रभु दा प्रेम नहीं है, ये गुरमुखां वाली मानसिक अवस्था नहीं है। आशक ए ना कांडी है जे लेखे वरतै सोए, जेड़ा लेखे नाल परमात्मा दी अकाल पुरख वाहिगुरु दी भगती करदा है, सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो कुछा जाए नानक दोवें कूड़ियां थाए न काई पाए। सलाम भी करे ते जवाब भी देवे। महाराज कहिंदे इहो जिहा प्रभु दा प्रेमी नहीं हुंदा। जो मालक दी अकाल पुरख वाहिगुरु दी रजा है उसे नू याद करदा। मन मूरख काहे बिल लाइयै, पुरब लिखे का लिखिया पाइयै, दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसे चितार, जो किछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिर है अजान। महाराज कहते जो कुछ मालक करदा उसनू मन करके ए मन लै कि ए मेरे वास्ते परमात्मा दी रजा है, इहदे विच ही अपने मन नू राजी करना। वर्तमान विच वर्तदा, ओ वर्तमान विच जो कुछ वर्त रहा है, होवन हार होए परवाना, जो हो रहा उसनू परवान है। भाई गुरदास जी कहते ने कारण करता जो करे, सिर धर मन करे शुकराना, सिर झुका के शुकराना करे बस मालक दा। भाई गुरदास जी कहते ने कारण करता जो करे, सिर तन मन करे शुकराना, राजी होए रजाए विच, दुनिया अंदर ज्यो मेहमाना। जिवें मेहमान है कोई परौना आ जांदा, महाराज ने सानू जीवन दे अंदर जड़ी जुगत दृढ़ कराई है, हुण परौने दे अग्गे जो कुछ रखिया जाए खा लैंदा, जिथे उन्नू विश्राम कराया जाए वह विश्राम कर लैंदा। गुरमुख सुगड़ सुजान गुर समझाया, मेहमानी मेहमान मजलस आया, खा वाले सो खान पीयन पे आया, करे न गर्भ गुमान हसै हसाया, हसदा है जिवें उस थां दे उत्ते जांदा है, अपने आप नू मेहमान समझदा, परौना समझदा। इसे तरीके भाई गुरदास जी कहिंदे ने राजी होए रजाए विच, दुनिया अंदर ज्यो मेहमाना, जिवें मेहमान हुंदा है ओ जिस दे घर जांदा है उस दी रजा विच राजी रहिंदा। ते सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने भावें जिवें दा भी समा होवे, सिकंदर दा एक वजीर सी लुकमान, किसे वेले उहदा गुलाम हुंदा सी, फिर मुतबन्ना बन गया, बहुत विश्वास करदा सी सिकंदर उस ते। ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਠਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੌੜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਛਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ 10 ਵਾਰ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕੌੜਾ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, 10 ਪੀ ਨਾ ਦੇ ਏਕ ਪੀ ਹਿਰ ਲੈ ਤਉ ਮੂੜਾ, ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਭਾਣੋ ਮਨ, नहीं दोष प्रभ मैं कब ठाने, अच्छो जान मुदत चित रहै।

सब तो औखा समझ आने वाला दसदे ने लोग उस दे बारे सौख्या ही जानन दे बारे कि उहदा स्वरूप किहो जिहा है। इस सारी अष्टपदी दे विच श्लोक दे विच बख्शिश है ते सारे अष्टपदी दे विच खोल के दस्या है कि उहदा स्वरूप किहो जिहा ने, उहदे गुण किहो जिहे हन। गरीब नवाज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कृपा कर रहे हन जी।

पलत सवार है। ए हलत पलत पाठ एदे च लल्ले शुद्ध ही उचारण करने, हलत पलत नहीं कहना। आम साध संग जी जो असि पाठ मेहनत नहीं कीती हुंदी ते लल्ला बहुत अशुद्ध बोलदे हां। हलत पलत उचारण नहीं, हलत पलत पूरे लल्ले दी आवाज जुबान नू कस के रखना, तड़ च रखना, ढिली नहीं पैण देना। जदों जुबान ढिली हुंदी है उदों साध संगत जी लल्ला जिहड़ा है ओह चरणां च बिंदी आला लल्ला बोलिया जांदा। सो इस करके पूरी जुबान नू कस के रखना सतगुर सिख का हलत पलत सवार है।

का मंत्र ऐड़ा खखे नु सियारी ऐड़ा ऊड़ा खुले मुंह आला जेड़ा थले जइया है दा उच्चारण होवेगा खखे नु सियारी ते ऐड़ा पहला भी एक ऐड़ा है लिखती रूप उच्चारण आप जी अपनी कापियां ते लिख सकते हो ऐड़ा खखे नु सियारी ऐड़ा ऊड़ा खुले मुंह आला आख्या पूरा गुर आख्या जा का मंत्र अमृत दृष्ट पेख होए संत।

तितली होके, शहद दी मक्खी होके, भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना। तेनु की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनु दूध पिलावा, पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दूध पी लेना, आप ही भोग ला लेना। गऊ तू, बछड़ा तू, दूध तू ही तो है। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं। थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेव्या, ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे प्रभु नू, मुसलमान लभदा है खानकाह दे चों, पर नामदेव जी महाराज कहंदे मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इसनों श्री नंद लाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत जाहिद फिदाए खानकाह, हर को जा जामे मुहब्बत दीदायम सरशारस्त। ब्राह्मण लभदा है तेनू बुतां दे चों, और मुस्लिम लभदा है तेनू खानकाह दे चों, पर हर को जा जामे मुहब्बत, मैनू ते हर थां ते तेरी मुहब्बत, तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है, चाहे वह मंदिर है, चाहे वह मस्जिद है, हर पासे तू ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे हिंदू पूजे देहोरा, मुसलमान मसीद, नामे सोई सेव्या, ना देहोरा ना मसीद, तो फिर किथे है? जे मंदिर ते मस्जिद विच नहीं तो फिर किथे है? तो नामदेव कहंदे सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। मेरा राम घट घट विच बोल रहा है, और राम तो बिना कौन बोल सकता है? राम ही बोल रहा है पशुआं विच, राम ही बोल रहा है पक्षियां विच, राम ही बोल रहा है मनुखां विच, राम ही बोल रहा है पवन दी शांशां विच, राम ही बोल रहा है सागर दे गर्जन विच, बदलां दे गर्जन विच, और सागर दी गर्जन दे विच ही नहीं, प्रभु बोल रहा है कोयल दी कू विच, बुलबुलां दे चहचहाण विच। हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं, सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं, सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज उस दे पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि विच प्रभु एक व्यापक सत्ता है। वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़िया टुकड़िया विच नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है। पर उस तक किवें पहुंची है ते उसनू किवें प्राप्त करिए, नामदेव दे ये आखरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, ज्यों जल मांझे माछलो, मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो, खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नू किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है, किवें पहुंचिए? मार्ग की है, आखिर रस्ता की है। तो नामदेव कहंदे ने जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है, उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदिया ही मार्ग बनदा है। आसमान दे बने बनाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं, उंज कोई रस्ता नहीं, बस उड़दिया ही रस्ता बनदा है, ते मच्छी दे चलदिया ही सागर विच मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है, राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है, गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर जाता है, तो गुरु दा मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है, इत्थे जपदिया मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदिया ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बनिया बनाईया सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी, पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे उत्ते ऐसा है कि असी जद चलांगे तो चलदियां ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखदे हां कि लगातार मनुख
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਗਡੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਸ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੱਛੀ ਚਲੇ ਤੋ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਕਸ਼ੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਪਰਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿਉ ਜਲ ਅੰਦਰ ਮੀਨ ਫਿਰੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਲਖ ਹੈ, ਜਿਉ ਆਕਾਸ਼ੇ ਪੰਖ ਉਡੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਕਸ਼ੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੜਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਦ ਜਪਦਾ ਤੋ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਜਪਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੂ ਬਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਰਾਮ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਬਿੱਠਲ ਬਿੱਠਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਿੱਠਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਭਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕੀਤਾ, ਬਿੱਠਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬਿੱਠਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਲੀਨਤਾ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते।

जे विद मन को संसार चूके पावनिद पार परों जन्म पाए कछ पलो न कीनो ताते अदक डरों गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो पस जो उदर भरों कहो नानक प्रभ बिरद पछानो

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्वजियां आपे पतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: इसदे व्रता कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभ आपे आप
1: अपन किया कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचे कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: रत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह
0: रब की जोत सगल घट सो है
1: धनवंता होए क्या को घर पै
0: सब कुछ किसका दिया धर पै
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहता वे
1: देखो हो वह दार
0: देन हार जाने गा वार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थम है थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने असथमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़ तरह
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: गुर दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
1: जिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख का हे बिर लाई है
0: गुर बिलखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग तू तिसे चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: ला काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: डॉक्टर रहो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माही
0: नानक पद से थी कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: आज मान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संतां संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कहे सब कोई
0: मुखो जलहर दरगह सोए
1: एहो व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताकै सतबर हार
1: चरण साध के धोए धोए पियो
0: हर प्रसाद को अपना जियो
1: साध की धूर करो इशनान
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अंत बेगम ते साधु राख है
0: हर गुण गाय अमर तरस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जी वालन हार
0: भूखे पौ देव ते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरब लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिस का उ करना जोग
0: जिस बिन दूसर हवा न होग
1: जप जम सदा सदा दिन रैणी
0: सब ते ऊंच निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की प्रतीत
0: जिन आवे हर प्रभु चीत
1: भगत सुनिया तिह लोए
0: जाके हृदय एको होए
1: सच करनी सकता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट साचा आकार
0: सच वर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सो जन सच समाता श्लोक
1: रूप नारे।

देव मंगेशे सगुण सो पर संसार चोरा जारा ते कुड़िया रखा रब बेकार एक होंदा खाचले था तिना भी कई कार जल था जिया पुरिया।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे ते धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुट पजा खानी सेत जा सुमत जाने नानका सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो कर

0: महला पहला पर गड्डी लदिए पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खास पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: धुआ पूरा तपे का सत गिर धुआ हो कल जुगरा थगन का पूरा गैर धुआ हो
1: पहला शाम कहे सितंबर समी सच में।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमलकिया
1: चारे वेद हो सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप पद करनी।

मात एक न मान्यो। सिमरेत शास्त्र वेद सब बह भेद कह हम एक न जान्यो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो साब तो हे बखाने दोहरा।

पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू, होवै तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा, अपना आप तू जान हे। जी अजंत सब खेल तेरा, क्या को वाख वखाणा, आख ता वेखा हे सब तू है, जिन जगत उपाया, कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीने, सच्चा मन वसाया। जीए जांत सब तुद उपायक, वेख परसन आया, लाभ लुभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुठा, तन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता, केरी बिखम मार्ग चलना। लाभ लोभ अहंकार तज त्रिसना, बहुत नाही बोलना, कन्या हो तिखी वाल हो निकी, एत मार्ग जाना। गुर प्रसाद जिनी आप तजिया, हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता, जुग हो जुग निराली। जिहो तू चलाए हो तिव चलह स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए हो तिव चलह जिना मार्ग पावे। कार कृपा जिन नाम लाए, से हर हर सदा त्यावहे, जिस नो कथा सुनाए हे अपनी, से गुरुद्वारा सुख पावहे। कह नानक सचे साहिब, ज्यो भावै तिवै चलावहे, एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया, एहो तनकै मन वसिया, जंतर हो लिखिया आया। एक फिर है कनेरे करह गल्ला, गली किना ना पाया, कह नानक शब्द सोहिला, सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहज से, पवित संगत सबाइया, कह दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित जिने गुरमुख हर हर त्याया। करमे सहज न उपजै, बिन सहज सहसा न जाए, न जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कमाए। सहसा जीओ मलीन है, कित संजम धोता जाए, मन तो वह शब्द लग हो, हर सो रह हो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एह सहसा इव जाए। जी यह मैले बाहर हंदरमल, बाहर हंदरमल जी यहोता मैले, तिनी जन्म जूवै हारिया। एह तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनहो विसारिया, वेदा मह नाम उत्तम सो सुनहे नाही, फिर जो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जूवै हारिया। जी हंदरमल बाहर हंदरमल, बाहर होता निर्मल जी हंदरमल, सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ की सोए पहुचा नाही, मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया, भले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल, सदा रहे गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जी हो रह गुर नाले। गुर के चरण हृदय ते आए, अंतर आत्मा समाले, आप छड सदा रह परणै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनहु संत हो, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै, बिन सतगुर मुगत न पावै, पावै मुगत न होर थै, कोई पुछह बिबेकिया जाए। अनेक जूनी परमे आवै, वेण सतगुर मुगत न पाए, पर मुगत पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखह, वेण सतगुर मुगत न पाए, आवह सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावह सच्ची बाणी, बाणी ता गावह गुरु केरी, बाणी आसर बाणी, जिन कौ नदर कर्म होवै, हृदय तना समाणी,
पीवह अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सारिग पाणी कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करहे रसना कहया कछु न जानी चेत जिन का हिर लया माया बोलन पए रवाणी कह नानक सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन तित मन लागाए हो आसमाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए आप वेख गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन नवसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक सस्यों लिबलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बज हो तत्तै सार न जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रैन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलहे अमृत बाणी कह नानक सो तत् पाए जिसनु अन्न दिन हर लिव लागै जागत रैन विहानी माता के उदर महा प्रत पाल करे सो क्यों मनहो विसारी है मनहो क्यों विसारी है ए वडदाता जे अगन मह आहार पहुंचावे ओसनो केह पोहे ना सकी जे सुनाओ अपनी लिवलावाए अपने लेवे आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानके वडदाता सो क्यों मनहो विसारी है जैसी अगन उदर में है तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जे ही करता खेल रचाया जात इस भाणा ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी त्रिसना माया अमर वरताया एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जना लिव लागी तिने विचे माया पाया हरे आप अमुलक है मोल ना पाया जाए मोल ना पाया जाए किसै विटह रहे लोक बिल लाए ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर साव पीऐ विच होय आप जाए जिसदा जीओ तिसमत रहै हर वसै मन आए हरे आप अमुलक है भागत ना के नानका जिन हर पल्लै पाए हर रास मेरी मन वणजारा हर रास मेरी मन वणजारा सतगुर तेरा जानी हर हर नित जपे हो जिया हो लाहा खटे हो दिहाड़ी एहो तन तना मिलिया जिन हर आपे भाणा कह नानक हर रास मेरी मन होवा वणजारा ए रसना तू अंदर सदाच रही तेरी प्यास न जाए ओरत केते जचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बहुर न तरसना लागै आए एहो हर रस करमी पाई ऐ सतगुर मिलै जिस आए कह नानक होर अन रस विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुझ विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जी उपाय जगत देखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए
सोग दुख ना व्यापाए, गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना आप पर जापाए। अनहत वाणी गुर

इस जग में आए कै क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन ने वसिया, पूर्व लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर प्रवान होवा, जिन सतगुर स्यो चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोर तरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नजरी हर निहालिया। एहो विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझे आ जा वेखा, हर एक है, हर बिन अवरना कोई। कह नानक एह नेत्र अंध से, सत गुर मिले दे बदृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो, साचा सुनने नो पठाए, साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनहु सात बाणी। जित सुनी मन तन हरिया होवा, रसना रस समाणी, सच अलख विडाणी, ताकि गात कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र होवा, हो साचा सुनने नो पठाए। हर जी गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ दुवारे, प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी, एक ना दसवा द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाव नव निध, तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहिला, साचा घर गावहो, गावहो तां सोहिला घर साचा, जिथे सदा सच त्यावहे, सचो त्यावहे, जा तुद भावहे, गुरमुख जना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है, जिस बगसे सो जान पावहे। कह नानक साच सोहिला,

देवीय अनसु सहज सुभाय दर्शन परसया गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम।

जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना जन्म तो अखां दे खुलदियां ही मनुख दियां अखां कुछ खोज रही ने लग रही ने। कुछ विद्वान ऐसा कहने एक तलाश का ना ही मनुख है और मनुख है जीवन भर की तलाश। जन्म तो ही मनुख की चेतना मनुख के प्राण कुछ लब रहे हैं कुछ खोज रहे हैं। खोज खोज के जो लभे है जो मिले है उस नाल तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी कोई नहीं इसका बोध भी कोई नहीं। तो तलाश जारी है जीवन दर जीवन जन्म दर जन्म अनंत काल तो। इस वास्ते कुछ विचारक कहने ने अनंत तलाश का ना ही मनुख है मनुख है एक तलाश का नाम कुछ खोज रहे कुछ लभ रहे। दोहरावा मैं खोज खोज के जो लभे है उस नाल तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी नहीं इसका बोध भी। फिर विद्वान कहने ने मनुख तृप्ति लभ रहा है तृप्ति तो बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। मनुख रजेवा लभ रहा है रजेवे तो बिना मनुख नु और कुछ भी नहीं चाहिए। जो रज जाए उन्हों राजा कहने ने राजा दे अर्थ जो रज गए और कोई इस दे अर्थ नहीं। जो रज गया राजा जो भूखा है भिखारी तलाश है राजा होण दी जमया भिखारियां दी तरह जीविया भिखारियां दी तरह यकीन जानो मर गया भिखारियां दी तरह। मरदे दम तक तलाश ते जा रही है खोज ते जा रही है। खोज खोज के जो लभे है उस नाल ते रजेवा होया नहीं तृप्ति होई नहीं। तो जो रजेवा ही नहीं होया तो फिर राजा नहीं है जे राजा नहीं है तो फिर भिखारी है। जे मंग जा रही है तो मंगता है जे भुख जा रही है तो भिखारी है। भुखा भिखारी होता है रजे होया राजा होता है। प्रथम मनुख की खोज का केंद्र जमीन ए धरती रही है। धरती ने मनुख की झोली विच अन्न पाया धन पाया तन दियां जितनियां लोड़ां ने इहदी झोली नूं भरे लेकिन जमीन मनुख नूं रजा नहीं सकी रजा नहीं सकी तृप्ति दे नहीं सकी। इतनी जमीन दे होंदिया मनुख भुख है मनुख भुख है। मैं फिर अर्ज करां भुखे नूं ही भिखारी कहिंदे ने रजे हुए नूं ही राजा कहिंदे ने। रज गए राजा अजय भुखा है भिखारी भुख ते मंग ते मजबूर करे कुछ और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अनंत जन्मा तो ए भुख जारी हो तन दियां लोड़ा ने लोड़ा बड़ी सीमित ने। मन दा लोभ है लोभ सीमित नहीं है नहीं। ध्यानपूर्वक सरवण करना तन दियां लोड़ां कोई बहुत ज्यादा नहीं जो पशुआं दी लोड़ां ने उही साड़ी लोड़ है। पर तन दी लोड़ नूं जद मन लोभ बना रहिंदा है इहदे ते इक निक्का जिहा मैं उदाहरण दे दिया। जैसे भोजन दी भुख है तो ठीक है मनुख दो रोटियां तीन रोटियां खा लेगा चलो चार पांच खा लेगा त्रिपत हो गए तन ते रज गए तन ते राजा हो गए। लेकिन मन कहता है स्वाद ते आ रहा जे और खाई भुख नहीं है ये खा रहे है ये लोड़ नहीं है लोभ बन गया है ये तन दी लोड़ नहीं है ये मन दा लोभ बन गया है। इस वास्ते कई ते कहने ने की करिए पेट ते भर गया है पर मन नहीं भर गया मन भरदा भी नहीं। क्यों तन दियां लोड़ां मन दियां लोड़ां ही नहीं है पर तन दियां लोड़ां नूं
भ्रांति करके मन ने अपनिया लोड़ा समझते हैं। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, जैसा मन मन ले पर मन ले। आप दी ज्ञात ले अर्ज करा, जो मन मन लेंदा है वो है, जो मन नहीं मनता वो मन की दुनिया च नहीं है। सवाल ये नहीं है कि वो वस्तु वो हस्ती है या नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है मन मनता है कि नहीं। अक्सर मनुख कह देंदा है पढ़िया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, सुनिया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, वेख्या तो है पर की करिए मन नहीं मनता। जो मन मनता ही नहीं वो मन का हिस्सा नहीं बनेगा। मन का हिस्सा वही वस्तु वही हस्ती बनती है जिन्हों मन मन लेता, मन मन लेता, मन पदार्थ नू मन लेता है परमात्मा नू नहीं मनता, मन परिवार नू मन लेता है निरंकार नू नहीं मनता। एक बहुत वड्डी सच्चाई है जिन्हों खुले दिल नाल कबूल करना होता है। मन धन नू मन लेता है, मन धर्म नू नहीं मनता, मन पूरे दे पूरे परिवार नू मन लेंदा है, संसार नू मन लेंदा है, मन करतार नू नहीं मनता। जी तुसी आखो साडा मन मनदा है क्योंकि गुरुद्वारे आया, मन मनदा है ताई ते आया। कोई मनुख कह सकदा सी मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, कथा कीर्तन सुन रहे हैं, मन मनदा है। गुस्ताखी माफ ते माफ कर देना, गुरबाणी इस तरह कहती है कोई लखां करोड़ां च इक अद्धा मन मनता है बाकी नहीं मनता। इस संबंध च मैं दो श्लोक तुहाडे सामने रखदे हां ताकि गल पूरी स्पष्ट हो जाए। ये दो श्लोक एक ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा, एक भगत सिरमौर श्री कबीर जी दा। ये दो श्लोक जिन्हां बाणियां विच हैगे ने उन्हां बाणियां दा सिरलेख इक्को ही है, गौड़ी महला पंजवां बावन अखरी। धन गुरु अर्जन देव जी दा इत्थे श्लोक बावन अखरी बाणी दा नाम है, गौड़ी श्री कबीर जी बावन अखरी। अखरां दी महिमा दे उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने पट्टी लिखी है आसा राग विच, गुरु अमरदास जी ने पट्टी लिखी है आसा राग विच। अखरां दी महिमा दे उत्ते बावन अखरी लिखी है गौड़ी राग विच गुरु अर्जन देव जी ने, और गौड़ी राग विच भगत कबीर जी ने अखरां दी महिमा गाई है। क्यों? आवाज ते पशुआं कोल भी है, कौवा भी काएं काएं करता है, शेर भी करे है, गऊ भी बोल, पंछी भी चहचहाते हैं। आवाज ते पशुआं कोल भी है, अल्फाज नहीं है, धुन ते पशुआं कोल भी है, अखर नहीं है, अखर नहीं। तो धुन तो आवाज तो पशु दी होंद दा ते पता चल जाए, और केड़ा पशु है यह भी पता चलता है भी ये शेर की गर्जन, इस आवाज तो ही पता चलता पे कोयल है, इस आवाज तो ही पता चलता पे कौआ है। आवाज तो यह तो बोध होंदा है कि आवाज किस दी है, पर जिस दी आवाज है उसनों पूछिए तू कितों आया, कितने जाना है, की लभ रहा है, इस सब कुछ कहने वास्ते उदे कोल अल्फाज नहीं है, अक्षर नहीं है। इस वास्ते पशुआं दा सारे दा सारा विकास रुकया, हजारां साल पहले जिथे पशु सन अज भी उत्थे ने, फिर हजारां साल पहले जिथे मनुख सी अज नहीं है। इसका जिन्ना बैरूनी विकास होया है सब अखरां दे आसरे दे होया है, अखरी नाम अखरी सारा, अखरी ज्ञान गीत गुणगा, अखरी लिखण बोलण वाण
ਅਖਣਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋ ਵਖਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਤਨੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਮਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਪਾਏ ਨੇ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਲ ਹੈ ਫੀ ਮੇਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਪੜੀਏ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਸੁਖਨ ਨਾ ਗੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਨ, ਐਬੋ ਹੁਨਰ ਨਿਹੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਨ। ਪੰਜ ਦਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਜਲਦਬਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਦ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਸੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਸੁਖਨ ਨਾ ਗੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਕ, ਐਬੋ ਹੁਨਰ ਨਿਹੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਕ। ਸਿਰਫ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਖੜਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਖੜਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਖੋ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ, ਗੁੰਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਇਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਗੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਵੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਭਗਤ ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਬਣਦਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾ। ਦੋ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਉਪਰਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਸਤੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾਲ। ਦੋ ਬੋਲ ਐਸੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰ ਬੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੋ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਧਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਇਹ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ,
कवित्री भी सी, संगीतकार भी सी। इतनी कला किसी एक मनुख दे होंदी नहीं, पर उसने नवा महल बनाया सी उन्होंने घर, ते घर दे अंदर सरोवर नहीं, घर दी चट करनी सी, महल दा महूरत होना सी। बड़े बड़े मेहमानों नूं बुलाया सी राजा, राजियां दा महल। तो आपदी गैत लई अर्ज करा, द्रौपदी ने उस सरोवर नूं सजाया, उहदे ते इस ढंग दी पेंटिंग कीती। उह सरोवर बगीचा लगदा सी, इधर क्यारी बने, इधर क्यारी बने, इधर पुल किड़े, इधर पुल किड़े, हैगा वह पानी से, पानी विच चित्रकारी, पानी विच बगीचा बना दिता। सिर्फ रंगा बुलाए गए सन, दुर्योधन भी, पांडवों का चचेरा मिला, पर यह जरा देरी नाल आया, देरी नाल आया तो कदमों में तेजी भी सी, फिर मैं वक्त से पहुंचा। तेजी करके उन्हें सोचे रस्ते च होके मैं महल के अंदर दाखिल होवा, नहीं सीधा बगीचे चो लग जा। जैसे बगीचे चो लंघन की कोशिश की थी, बगीचा तो है ही नहीं, पानी से, पानी च कदम रखे अडो, तैरना जानता सी, तैर के बाहर ते आ गया, पर द्रौपदी की कई दिन की मेहनत बर्बाद चली। वो जो सुंदर चित्रकारी की थी सी उसने सब खराब। दुर्योधन नु वेख के उदे मुंह निकलिया अंधे दा अंधा ही। सिर्फ इसे एक बोल ने महाभारत करा दिता, इसे एक बोल। बड़े बड़े घरां दे कलेश देख लेना, किधरे नूं दा एक बोल ते किधरे सस दा एक बोल, किधरे पिता दा एक बोल किधरे पुत्र दा एक बोल, किधरे वड्डे भरा का एक बोल किधरे छोटे भरा का एक बोल। बड़ा भारी घर नूं कलेश दा अखाड़ा बना के रख देना। फिर महाराज की बाणी कहती है, ओ मनुख हौला है केड़ा जिदे बोल हौल के हौले है, मन मत हौली बोले बोल, जिदे बोल हल्के ने कौड़े ने फिके ने झूठे ने चोट पहुंचाण वाले ने हौला है, मनुख हौला बोल जो हल्के ने। बोलां च मिठास है, बोलां च दूर दृष्टि है, बोलां विच गहराई है, और जिस बोल च गहराई होवेगी उचताई भी उसे च होवेगी। जिस दरख्त ने अपनियां शाखां नूं आसमान तक लै जाए, आपदी गत लई अर्ज करां, फिर उस दरख्त नूं अपनियां जड़ां पाताल विच लै जाणियां पैण। जो दरख्त अपनियां जड़ां नूं गहरा नहीं लै जा सकिया, वह अपनियां शाखां नूं उपर भी नहीं खा सके। जितनियां जड़ां गहरियां जाणगियां उतने शाखां उपर उठणगियां। जो बोल गहरे नहीं होंदे वह बोल उच्चे भी नहीं होंदे। उच्चे बोल, गहरे बोल, मधुर बोल, यह महानता की निशानी है। मनमत हौली बोले बोल, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हल्के बोल छोटे बोल, मनुख दे छोटे होने की पहचान। तो हुण मैं अर्ज करा, मनुख की दुनिया की सारी हलचल भाईचारा ते संबंध, मनुख की बहुत सारी दुनिया की कल कलेश लड़ाई ते झगड़े 99% बोलों के आसरे ते चल रहे। बोलो, दो बोल बोले प्रीत टुट गए, दो बोल बोले ओपरे बेगाने अपने हो गए, संबंध सारे जुड़ते हैं बोलन ना। जिथे संबंध ना होवन मनुख कह दिंदा साड़ी उत्थे बोल चल नहीं है। वेखदा मनुख सारिया नूं है, लेकिन वेखण दे नाल संबंध नहीं जुड़ते, बोलन नाल जुड़ते। एक सियाणा मेहमान ते सिर्फ एक दिन दे ची अंदाजा ला लैंदा है, वक्ती तौर ते सही पति पत्नी दे संबंध टुटे हुए हैं।
क्यों बोलते ही नहीं। दो भरावां दे संबंध दे दीवार खड़ी है, क्यों बोलते ही बोलते ही। जिथे बंदे दा संबंध होवे मनुख कह देंदा उत्थे साड़ी बोलचाल है, उत्थे साड़ी बोलचाल है। मनुख दी दुनिया दी सारी तामीर ते मनुख दी दुनिया दी सारी बर्बादी 99% बोलां ते खड़ी है। ऐसे बोल धर्म ग्रंथां दे जिन्हां नूं पढ़ के ते जप के मनुख भगवान दा रूप हो जांदा है, पर ऐसे बोल फैश लिटरेचर दे गंदा साहित्य किताबां दे जिन्हूं पढ़ के मनुख बिल्कुल शैतान हो जांदा। कुछ अक्खर ही ने उन्होंने मनुख नूं भगवान बना दिता, कुछ अक्खर ही ने जिन्हां ने मनुख नूं शैतान बना दिता। एक सच्चाई है, बहुत वड्डी सच्चाई है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी, भगत कवि अपनी बाणी च अखरां दी महिमा बयान करदे और उन्हां बाणियां दे नाम ने आसा मल्ला पहला पट्टी लिखी, आसा मल्ला तीजा पट्टी लिखी, तख्ती अखरां दी महिमा। गौड़ी मल्ला पंजवा बावन अखरे, गौड़ी श्री कबीर जी बावन अखरे। हैरानगी हुई सी मैनू अखरां दी महिमा दे उत्ते इतनी मेहनत कीती, इतना कुछ समझाया गया और एक एक अखर दी मनुख सही वरतों करे। चलो हथ दी किधरे गलत वरतों हो भी गई है, पैर किसे गलत पासे चले भी गए ने, शायद इतनी तबाही ना होए जितना गलत अखर वर्त के तबाही हो जाए, बर्बादी हो जाती है, नुकसान हो जाता है या मिलाप हो जाता है, कुछ प्राप्त हो जाता है। दूर क्यों जाइए, वाहेगुरु शब्द दो अखरां दा जोड़ है, राम अखर दो अखरां दा जोड़ है, कि ये दो अखरां दा जुड़िया होया अखर जब जब के मनुख राम दा रूप हो जाता है, परमात्मा दा रूप हो जाता है। बोल ऐसे कोई बोले राम दा रूप हो जाता है, बोल ऐसे कोई बोले निरा शैतान बन जाता है। मनुख दी दुनिया दी महिमा सारी अखरां ते खड़ी। भगत कबीर कहंदे ने एक एक अखर तो मैं की उपदेश रहे, एक अखर ने मेरे लिए केड़ी दिशा बनाई, एक अखर ने मैनू की सोचण दे जो है मजबूर किया। मैं इस वक्त एक अखर लैंदा क्योंकि 52 अखर कबीर दे ते 52 गुरु अर्जन देव जी दे, ज्यादा नहीं तो फिर 52 दिन ते चाहिए न खोलण नूं सुणन नूं समझाण नूं पढ़न। हां इक्को शहर विच मैं इहदी कथा जरूर कीती, जम्मू च 52 अखरी कोई 1.5 महीने समाप्ति हुई सी। 52 अखरी इस वक्त एक अखर नूं लैंदा, मां अखर उर्दू जमीन कहते हैं, एम पंजाबी च मम्मा कहते हैं, मां। भगत कबीर कहते हैं मम्मा मन से काज है, मन सा रे सिद्ध होए, मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। मां अखर तो मैं ये प्रेरणा रही है खोज मन दी करने, मन नो साधना है, मन नो समझाना है। क्यों मम्मा मन से काज है, मन साधे सुख हो, मन ही मन से कहे कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई। मन दी खोज कर करके मैं इत्थे पहुंचिया, मन जैसा और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा क्यों, एहो मन शक्ति एहो मन सी हो, एहो मन पंच तत्व हो जी। मन मन जाए ते मन ही भगवान हो जाता है, मन ना मने ते मन ही शैतान हो जाता है। एड सारी मन नु मनाण ते मैं फिर दोहरावा, अक्सर मनुख कह देंदा है पढ़िया ते है मन नहीं मनता,
ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਉਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਵਕਤ ਕੱਢਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਝੁੰਮ ਝੁੰਮ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਏ। ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਹਰ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜੈਸੇ ਮਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਬਲਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਲਸਫਾ ਗੋਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ, ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ, ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਬਲੇ ਵਜਾਓ, ਵਾਜੇ ਖੜਕਾਓ, ਤਬਲੇ ਖੜਕਾਓ, ਛੈਣੇ ਖੜਕਾਓ, ਗਲਾ ਫਾੜ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਲਾਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਲਸਫਾ ਘੋਟੋ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕਤ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਧਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਲਵੇ, ਮਨ ਲਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਤਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਖੋਲਦੇ,
और गजब दी गल ध्यान नाल सुनना, मम्मे अखर कोई खोल मां अखर वो बावन अखरी कबीर दी, ये बावन अखरी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी। महाराज इस श्लोक विच कहंदे ने मनुख परमात्मा नू मनदा नहीं है, मनुख परमात्मा कोलो मंगदा मनदा नहीं है। मंग पूरी हो जाए तो संबंध टुट जांदा है, मंग ना पूरी होवे तो संबंध टुट गल खत्म। संबंध ते सिर्फ मंग दा। तो हुण अपने पावन पवित्र श्लोक विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण करते ने मम्मा मांगन हार इयाना, देन हार दे रहो सो जाना। मंगदा ऐ दे ऐ दे ऐ दे ऐ दे। क्या परमात्मा देंदा है? देंदा। आख है मंगे दे दे, दात करे दाता देंदा। मंगदा है ओ देंदा है, मंगदा है ओ देंदा है। जो दे ही जा रहे हैं उस नाल जुड़ी जा रहे हैं, जो देंदा पे है उस नाल टूटी जा रही है। हकीकत है मम्मा मांगन हार इयाना, इयाना है। जो मंगन दा संबंध परमात्मा नाल जोड़दा है इयाना है, ते जो परमात्मा नाल मनन दा संबंध जोड़दा है मनदा है प्रभावित है वो इतना स्याणा है। महाराज कहंदे ने मन्ने की गत कही ना जाए, देखो करे बचे पछता। ओदी ते महिमा बयाने नहीं कीती जा सकती जो परमात्मा नू परमात्मा करके मन दा। इतनी सौखी खेड ना समझा सी मन दया गुरु नू आया गुरुद्वारे नहीं, मंगदे कुछ चाहिदा है। कुछ कामनावां संसार तो नहीं पूरी होंदियां, शायद गुरु तो पूरी। कुछ कामनावां परिवार तो नहीं पूरी होंदियां, शायद गुरु तो पूरी। कुछ खेड बाजार विच नहीं बन सकी, शायद गुरु कोल बन जाए। कोई खेड मित्रां पुत्रां कोल नहीं बन सकी, शायद प्रभु कोल बन जाए। मंगण दा संबंध गुरु अर्जन देव जी महाराज फिर उसे ही श्लोक विच कहिंदे ने मम्मा मांगन हार इयाना, देन हार दे रहो सुजाना। पर जो मांगे तो मांगे बिया, जानते कुशल ना कबहू थी। बिया लेंदी पंजाबी दा अक्षर होवे, इहदे अर्थ बन जाने ने और बिया मंगदा है और मंगदा है। बिया शब्द चढ़दी पंजाबी दा होवे अमृतसर जलंधर दे बोली जांदी, पर बिया दे अर्थ ने परुथा बई रोटी है, बिया भोजन है, परुथा भोजन है। इत्थे जो अर्थ बनते ने वो लहंदी पंजाबी का शब्द है और मंगता है। जो मांगे तो मांगे बिया, परमात्मा को जो कुछ भी मंगता है परमात्मा नु छोड़ के होर मंगता है। ऐ दे ऐ दे ऐ दे ऐ दे, ऐ मेरे घर आ जाए, ए मेरे घर आ जाए, ए मेरे घर आ जाए। फिर परमात्मा आखे मैं भी आ जावा तेरे घर, ना ना तेरी बोलो तू एक पास तेरी रोड। होर मंगदा है परमात्मा को, परमात्मा को परमात्मा नहीं मंगता। इस वास्ते होर ते मनुख को हो जाता है, परमात्मा नहीं होता, नहीं आया भी नहीं होता।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
2: जा कॉल किरण @604-581-1900।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण @604581 1900।